निकलती है और इससे ऊपर एक एक ऐसे करे सुराख है या उसमें बाल्व लगा हुआ है और जहां से बड़ी आंतरी हमारी शुरू होती है उसका असेंडिंग कॉलर शुरू होता है और जितना भी पंप होकर लिक्विड आगे आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर चला जाता है और जैसे ही वो पंप करके ऊपर जाता है साथ में कुछ बचा हुआ रेजिडुअल उसको बोलते हैं रेजिडुअल पोर्शन। रेजिडुअल पोर्शन जो है अपेंडिक्स में भी चला जाता है क्योंकि अपेंडिक्स भी एक खोल है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, खोल है, उसके अंदर भी वो हमारा इस वक्त तो मल की तरह हो गया ना क्योंकि बहुत सारा उसमें से जितने भी विटामिन थे, मिनरल थे, खुराक के तत्व थे अब तक इलियम से चूस लिए गए, अब तक मेसेंट्री ने उससे काफी कुछ चूस लिया है, फिर भी रेजिडुअल में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा बच जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर उसकी दोबारा उसको स्क्वीज किया जाता है और उसमें से निकाला जाता है और वो जो अपेंडिक्स में हिस्से में जाती है जितना भी माल या वो पोर्शन रेजिडुअल वो फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सख्त टाइप का मटेरियल अगर अपेंडिक्स में चले गया वापस नहीं आया तो उस वक्त वहां पर रुक जाता है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। लीथोगिल उसको हम बोलते हैं, जो कोई पोर्शन अंदर रुक गया तो वो उसमें आगे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है तो फिर अपेंडिक्स हो जाता है। इस तरह की बातें हम लोग आगे कर चुके हैं ऑलरेडी और ये पोर्शन जो है वो हमारे रीनल एरिया का या लंबर एरिया का हिस्सा है। अब आए हम आगे की बात के लिए, ये हम डिवीजन कर दी कि नहीं भाई इसको हम इलियक एरिया में नहीं कर सकते। अब इलियक एरिया में फिर बाकी बचता क्या है, हम लोग फिर दोबारा एक बार बात करें कि अब्डोमेन के जितने भी मसल मांसपेशियां हैं ना वो रीढ़ की हड्डी के साथ दोनों साइड से जुड़े हुए हैं और रीढ़ की हड्डी पेल्विक एरिया को ना लंगती हुई पास करती हुई क्रॉस करती हुई नीचे और कॉक्सिक्स तक जाती है और वो कॉक्सिक्स जो है हमारी वो इंड है लेकिन ये हमारे अब्डोमेन से नीचे चली जाती है गुदा के पास गुदा के लेवल पे चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेट का हिस्सा जो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन से नीचे है उसकी मांसपेशियां उसको बनाने के लिए जो मांसपेशियां हैं वो वही हैं जो अब्डोमेन की हैं। मतलब क्या हुआ कि ये अब्डोमेन का ही हिस्सा है और फिर हम इन हिस्सों की शिनाख्त करेंगे तो राइट साइड में सबसे पहले हमें जो दिखाई देगा वो है फेलोपियन ट्यूब्स, एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिएटेड इन झालरदार झालर की जैसे बना हुआ है जिसमें ऑर्ग का ओवम आता है और फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है स्पर्म को मिलने के लिए। तो वो एरिया इस एरिया में आता है फेलोपियन ट्यूब का, एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब राइट फेलोपियन ट्यूब कहेंगे क्योंकि फेलोपियन ट्यूब दो हैं, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है यूटर के। तो ये एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब का राइट साइड का जो एंड हिस्सा है वो इस एरिया में आता है। कई बार जो लिगामेंट है जिस लिगामेंट के साथ ओवरी जुड़ी हुई है ना, ओवरी बच्चेदानी के लोअर पोर्शन से जुड़ी होती है और एक रस्सी है जिसको लिगामेंट हम बोल रहे हैं उसको ओवेरियन लिगामेंट हम बोलते हैं और ओवेरियन लिगामेंट से वो लटक रही है लेकिन अपनी एक पोजीशन में टिकी हुई है क्योंकि वो गिलाफ जो ब्रॉड लिगामेंट का है उसके अंदर है, वो आगे पीछे नहीं जाती, फिक्स रहती है। तो वो जो है उस ओवरी का हिस्सा भी इस राइट इलियक एरिया में आ जाता है। तो तीन बातें मैंने ये कर दी, एक तो फिम्ब्रिएटेड एंड हो गया, एक लास्ट पोर्शन जो है टर्मिनल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, एक ओवरी का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें हो गया। तो इतने सारे हिस्से जो हैं हमारे राइट इलियक एरिया में रहते हैं, ज्यादातर यही हिस्से अगर हम लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे तो उसमें भी यही हिस्से आएंगे लेकिन लेफ्ट साइड में और बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अभी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि नहीं भाई अकेला फेलोपियन ट्यूब्स ही नहीं है बाईं तरफ, अकेला फेलोपियन ट्यूब्स का वो एंड ही नहीं है या ओवरी का हिस्सा ही उसमें नहीं आता। इसमें सबसे पहली बात आती है जो ऊपर सुपरफिशियल एरिया में आती है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बाईं तरफ
लार्ज इंटेस्टाइन तिली से स्प्लीन से जब नीचे को आती है उसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, और डिसेंडिंग कोलन किडनी से ऊपर होता हुआ नीचे जब जाता है, और हम ये कह रहे हैं कि ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन एक बॉर्डर है, इमेजिनरी है, वैसे कोई लाइन नहीं है उसमें, ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन एक इमेजिनरी हमने बॉर्डर मान लिया, उससे जब नीचे जाता है तो उसमें क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ डिसेंडिंग कॉलन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का आखिरी डिसेंडिंग कॉलन का हिस्सा जो है एक तो योज में आता है। अब आंतरी तो यहां खत्म नहीं होती, फिर आगे क्या है, आगे है सिग्मोइड कॉलन, एक तरह का टर्न डाइवर्शन आपने देखा होगा रोड पर, कभी कोई खराबी आ जाए ना तो फिर उसमें किसी और रोड को टर्न करने के लिए वो डाइवर्शन लिखा होता है, वो डाइवर्शन यहां पर होता है, उस डाइवर्शन का नाम है सिग्मोइड कॉलन। क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि जो आंतड़ी नीचे आ रही है, जो बड़ी आंतड़ी नीचे आ रही है पेट में, वो सुपरफिशियल है, मींस मांसपेशियां जो पेट को बांधने वाली मांसपेशियां हैं उनके नीचे वही है, मतलब पेट के अंगों के उस सुपरफिशियल है ऊपर है, और यहां आकर ये जो सिग्मोइड कॉलन बना, इससे जो सिग्मोइड कॉलन है वो एकदम नीचे को जाना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंड फॉरवर्ड, आगे को भी जाता है चट्टी वाले रस्ते को, उसको रेक्टम की तरफ जाना है लेकिन नीचे को जा रहा है, ये सुपरफिशियल था ये नीचे को जा रहा है, तो ये सिग्मोइड कॉलन की डायरेक्शन है, और ये भी आता है इसी लेफ्ट साइड के इलियक रीजन में, लेफ्ट साइड के इलियक रीजन में सिग्मोइड कॉलन भी हुआ, लोअर पोर्शन ऑफ दी डिसेंडिंग कॉलन भी हुआ, और इसके साथ इस लेफ्ट साइड की जो एंग्वाइनल कैनाल है वो भी इस एरिया में है, इसी एरिया में एंग्वाइनल कैनाल भी है। उसके बाद हमने ये कहा कि सिग्मोइड कॉलन बिल्कुल नीचे और सेंटर की तरफ चला जाता है, जो हमारी मिड लाइन है शरीर की सेंटर की चला जाता है, और फिर रेक्टम के साथ जुड़ जाता है। तो मेरे कहने से मतलब ये है सिग्मोइड कॉलन का लोअर पोर्शन, सिग्मोइड कॉलन के आगे रेक्टम का पोर्शन, रेक्टम के आगे एनस का पोर्शन, ये सभी हिस्से जो हैं ये इलियक एरिया के नहीं, ये हाइपोगैस्ट्रिक एरिया के, जो दोनों इलियक एरिया के बीच में जो हमारी मेडिक्लेविकुलर लाइन ऊपर से आ रही हैं उनके बीच के जो हिस्सा है उसका नाम हमने रखा हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। तो ये जो इसे मैंने अभी गिने कि सिग्मोइड कॉलन पहले शुरू तो होता है इलियक एरिया में, लेफ्ट इलियक एरिया से शुरू होता है और नीचे को फ्रंट लाइन को जाता है, और इसका नाम ये है हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में आ जाता है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक। अरे भाई ये तो नीचे आ गया, इसका गैस्ट्रिक का क्यों नाम रख दिया हमने? इसलिए रख दिया कि जब हम एपिगैस्ट्रिक एरिया में गैस्ट्रिक की बात कर रहे थे, स्टोमक की बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि ये स्टोमक जो है ये हमारा जे टाइप का है, और जे टाइप का होने की वजह से जैसे हम लेटे हुए हैं तो इसकी पोजीशन और है, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो इसकी पोजीशन पेट में अम्बिलिकल से नीचे चली जाती है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि इसके ऊपर एक गिलाफ है, गदेला चढ़े हुए हैं, ओमेंटम जिसको हमने बोला था, लेसर सैक ऑफ ओमेंटम, ग्रेटर सैक ऑफ ओमेंटम, और ये भी नाभि के एरिया तक इसका साथ देते हैं, जे का जो है वो हाकी वाला नीचे वाला एरिया बच जाता है, वो इसके हाइपोगैस्ट्रिक एरिया के नजदीक पहुंच जाता है, अम्बिलिकल से नीचे चला जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। अब हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में भाई क्या क्या आता है फिर दोबारा हम गिनती करेंगे। सबसे ऊपर जब हम ये ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन से नीचे देखते हैं तो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है यूरिनरी ब्लैडर, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, दोनों का किडनी से इश्यू होने वाले यूरेटर का आखिरी भाग प्लस ब्लैडर वो यहां पर है। अब ब्लैडर को ऊपर से हमने शनाख्त करनी हो तो कैसे करेंगे? ये जो सामने हमारी हड्डी है ना जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, वो बक्कर आता है वहां सिम्फाइसिस प्यूबस का नाम हमने रख दिया। ये जो सिम्फाइसिस प्यूबस है ना, ब्लैडर आम तौर पर इसके सामने रहता है,
इसका जो ऊपर वाला बॉर्डर है ब्लैडर का वो यहाँ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ऊपर जो यूरेटर आ रही है दोनों किडनी की तरफ से, ये भी इसका एक हिस्सा होती है। उसके बाद नीचे आ जाता है ब्लैडर। खास तौर पे आदमियों में तो ब्लैडर ज्यादातर इस सिम्फाइसिस ट्यूबस से नीचे ही रहता है। आदमियों में जो ब्लैडर है सिम्फाइसिस ट्यूबस से नीचे रहता है, पूर्ण तौर पे ये हाइपोगैस्ट्रिक एरिया का हिस्सा है। लेकिन औरतों में, हाँ आदमियों भी ऐसा हो सकता है कि उसको पेशाब नहीं आया, पेशाब बंद हो गया, नाली बंद होगी और उसको पूरा दिन पेशाब ही नहीं आया, तो ये भी सिम्फाइसिस ट्यूबल से ऊपर हमें दिखाई दे देता है। मैं, मुझे एक बात याद आ गई थी, मैं कोटीशा का मैं प्रैक्टिस करता था, मेरा अपना इंडोर हॉस्पिटल था और वहां पर मंदरपिन गांव है, वहां से तकरीबन 5-6 मील होगा, वहां से एक आदमी को लेकर आए हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल मेरे नजदीक ही था सड़क पार से, और वहां पर लेकर आए कि इसको तो पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब बंद हो गया। अब आप देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उन्हें आमतौर पर क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, सब कुछ होते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ, या तो पैसे लेने की वजह से हुआ, या कुछ उनको समझ नहीं आई, उनके दिमाग में वो नए बंदे थे इसलिए हो गया। और उनके पास वो 2 दिन पड़ा रहा, पेशाब नहीं आया, अल्टीमेट वो बेहोश हो गया। उन्होंने उसको बोल दिया कि भाई इसको फटाफट लुधियाना ले जाओ, यहां पर इसका कोई हल नहीं है। अब जब वो बाहर आ रहे थे हॉस्पिटल से तो उसको किसी ने बता दिया, मुझे लुधियाने वाला डॉक्टर वहां को, मैं वहां पर लुधियाना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते फिर अपने एरिया में शिफ्ट हो गया था कोटीसगा में, तो मुझे ज्यादातर वहां पर लोग लुधियाने का डॉक्टर बोलते थे। तो वो बोलते यार ये यहां पर लुधियाने वाला एक डॉक्टर है, इसको दिखा लो। अब वो मेरे पास लेकर आए, बताया कि भाई ये बेहोश हो गया है, इसको तो 2 दिन से पेशाब नहीं आया, वो बड़ी कोशिश उन्होंने की है और उनसे वो नाली जो पेशाब में डालनी थी वो डाल ही नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा भी हमारे पास की बात नहीं, इनको फटाफट लुधियाना शिफ्ट कर दो और हम लोग आपके पास ले आने। बोले यार बड़ी अजीब बात है कि इन लोगों से इतना ही नहीं समझ आई कि ब्लैडर की पोजीशन क्या है, इसका हम करें क्या, पेशाब तो ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में तो नहीं है ना, अगर बंद हो गया है तो यूरेथ्रा हो गया है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रोस्टेट में आई है ना, प्रोस्टेट भी ब्लैडर के नीचे है, तो पेशाब तो भरा हुआ थैली में ब्लैडर में, तो इन्होंने निकाला क्यों नहीं। अब मैंने उसी वक्त उसको, हम बोलते हैं क्योंकि मेरा सर्जरी और गायनी में गोल्ड मेडल है, आप सब जानते हैं जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मेरे सर्टिफिकेट में बकायदा यूनिवर्सिटी ने लिख कर दिया हुआ मेरा गोल्ड मेडल है यूनिवर्सिटी का बिहार से गायनी और सर्जरी में। तो मैंने उसी वक्त देखा यार ये तो 2 मिनट की बात है, मैं तो अभी इसका पेशाब निकाल देता हूं। और मैंने उसको बोलते हैं सुप्रा सिम्फाइसिस इंसीजन, सुप्रा इन्फाइसिस इंसीजन भी की जाती है लेकिन नीडल भी की जाती है। तो मेरे पास नीडल और सब कुछ था, बड़ी काफी मोटी नीडल थी, मैंने उसको लोकल एरिया को सुन किया और सुप्रा ये जो हमारी प्यूबिक एरिया है इसके ऊपर से मैंने नीडल जैसे ही अंदर दी वैसे ही पेशाब की धार जो उसकी बाहर आ गई, वह जो उसकी जो नीडल थी उससे बाहर आनी शुरू होगी और मैंने थोड़ा सा प्रेशर किया, प्रेस करने से जितना भी पेशाब था उसका बाहर आ गया। उसकी मैं पोजीशन चेंज कर दी, पहले राइट किया फिर लेफ्ट किया, अल्टीमेट ब्लैडर में जितना पेशाब था वो बाहर आ गया, उसको होश आ गई थी। तो ये थी, अब उसको मैंने अपने इंडोर हॉस्पिटल में, मेरे पास 10 बेड हुआ करते थे, मैंने उसको लटा दिया। दूसरे दिन डॉक्टरों को पता चला कि यार वो लुधियाने वाले डॉक्टर के पास गए थे और वो यहीं पर है अभी, तो अभी तक तो उसको मर जाना चाहिए था, अगर यहां था तो या उसको ले जाते। वो मेरे पास देखने आ गए, हम लोग यहाँ सिविल हॉस्पिटल से हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को, यार हम लोग तो कोई भी हॉस्पिटल यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मैंने बोला मैंने कहा कि आप नहीं चेक कर सकते, कर सकते हैं। नहीं नहीं अभी हम चेक करने के नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि वो जो मंदरा गांव से आदमी आया था उसका आपने क्या किया। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात थी, मैंने सुप्रा ब्यूपक इंसीजन दी है उसको, वो ठीक कर दिया, वो पेशाब निकल गया उसका नीडल थी, है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास होम्योपैथिक में इस तरह की योग या दवाइयां होती हैं, उसी नीडल से ही मैंने, क्योंकि नीचे से तो जा नहीं रहा था,
उसी निजन से ही मैंने उसके अंदर दवाई दी। दवाई देने के बाद वो जब यूरेथ्रा को अंदर से गई तो वो उसकी सूजन खत्म हो गई, कम हो गई, और नेक्स्ट डे उसको पेशाब यूरेथ्रा से आना शुरू हो गया। ब्लैडर में स्वेलिंग थी या प्रोस्टेट में स्वेलिंग थी, वो स्वेलिंग कम हो गई, नेक्स्ट डे उसको अपने आप पेशाब आना शुरू हो गया। तो वो लोग बहुत हैरान हुए, यार हम लोग ऐसा क्यों नहीं जानते थे, या हम लोग ऐसे नहीं कर पाए, या पता नहीं उनकी क्या ऐसी मर्जी। तो वही बात मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि सिम्फाइसिस क्यूबस के नीचे आदमी का ब्लैडर रहता है, उसका जो अपर बॉर्डर है यूरेटर्स का, वो सिम्फाइसिस क्यूबस के अपर बॉर्डर के लेवल पे होता है। औरतों में क्या है, औरतों के रूप में ब्लैडर का तो बेचारा ये ऐसे है जैसे अंबर मेल नहीं होती किसी दरख्त के ऊपर लगी होती है, और जब दरख्त कट जाए तो वो तो बेचारी नीचे गिर जाएगी, उसका तो अपना कोई स्टेम है नहीं है, उसका कोई तना तो है नहीं कि खड़ी रह सके अंबर मेल, वो तो दरख्त के ऊपर ही चढ़ी होती है। तो ये जो ब्लैडर होता है ना औरतों में, ये बच्चेदानी के फ्रंट एरिया में एंटीरियर पोजिशन उसको बोलते हैं, एंटीरियर यूट्रस की पोजीशन के साथ ब्लैडर लगा होता है, जमा होता है, उसका आसरा लिया होता है इसने। और उस लिहाज में जैसे जैसे औरत की प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे यूट्रस भी ऊपर को आती है, ब्लैडर भी ऊपर को आता है। अब जितना थोड़ा थोड़ा पेशाब बूंद बूंद नीचे वाले हिस्से को जाता है, आमतौर पर प्रेगनेंसी की फर्स्ट निशानी, मेरी माताएं मेरी बहनें ये सब सुन रही होंगी कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद औरत को बार बार पेशाब आने की हाजत होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि यूट्रस बड़ी फैली, उसने सिम्फाइसिस प्यूबस के साथ पिछली तरफ तो हमारी वो लॉकडाउनस पहुंच है, सामने हड्डी है, हड्डी के साथ यूट्रस और ब्लैडर जो प्रेस हुए हैं, तो ब्लैडर के दो हिस्से हो गए, एक ऊपर रह गया जहां से यूट्रस में पेशाब है, यूरेटर से पेशाब आ रहा है दोनों तरफ से, लेकिन ये प्रेस हो गया हड्डी के साथ। और जैसे ही ये यूट्रस की मूवमेंट चलती है जिसको हम यूट्राइन सफर बोलते हैं, उस मूवमेंट के साथ जैसे जैसे वो ढीला होता है कुछ पेशाब नीचे आता है, वैसे ही औरत को बार बार हाजत होती है पेशाब जाने की, और ये प्रेगनेंसी होने की आमतौर पर पहली निशानी होती है, और कुछ पता हो या ना हो। हालांकि यूटीआई इन्फेक्शन औरतों को हो जाता है, उसकी वजह से भी तो ऐसा होता है, बार बार पेशाब आता है, उसमें जलन होती है, खारिश होती है, लेकिन इसमें जलन नहीं होती, इसमें खारिश नहीं होती, लेकिन इसमें बार बार पेशाब आने की हाजत होती है। अगर गृहस्थ जीवन नॉर्मल चल रहा है और उसके बाद ऐसा होता है तो ये मतलब फर्स्ट साइन है प्रेगनेंसी का, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि बूंद बूंद पेशाब आना, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब आना शुरू हो गया। तो मैं ये सब सारी कहानी आपको बताकर ये बताना चाहता हूं कि औरतों में यूरिनरी ब्लैडर बच्चेदानी के फ्रंट में लगा होता है, तो सामने उसके प्यूबस हड्डी है, ये प्यूबस बोन है, उसके पीछे ब्लैडर है, उसके पीछे जो है अगर मान लीजिए और सामने स्टैंडिंग है कोई, तो सामने हड्डी है, हड्डी को हम सेपरेट किया, उसके पीछे ब्लैडर है, ब्लैडर के पीछे यूट्रस है, यूट्रस के पीछे एक खाली जगह है जिसको हमने डॉगलस पॉज कहा था, डॉगलस पॉज के नीचे फिर जो है हमारी रेक्टम आ जाती है। तो मतलब ये वहां का सीधा एक आप समझ सकते हैं टारगेट है कि क्या क्या है उसके पीछे, क्या क्या है उसके पीछे। और ये सारी चीजें जितने मैं बोल रहा हूं वे सारी की सारी हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में रहती है, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया का ये आमतौर पर हिस्सा है। और यूट्रस का डेवलपमेंट आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने तक, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक सिम्फाइसिस ट्यूबस के बराबर तक आ जाता है, वरना ये नीचे रहता है। प्रेस तो हुआ, बूंद बूंद पेशाब वाली बात तो पहले हो गई, लेकिन जब हम लोग पेट से बच्चेदानी का फंडस देखने की कोशिश करते हैं तो साथ में हमें एक पल्पेशन महसूस होता है हमारे हाथों को, कि जैसे कि पानी का भरा हुआ ब्लैडर हो तो उसको हाथ बजा दें, लेकिन जब उसको और आप प्रेस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी वाली औरत को चेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही दबाएंगे उसी वक्त उसको पेशाब की हाजत हो जाएगी, और कई बार डॉक्टरों के एग्जामिन करते करते भी उसका पेशाब निकल जाता है। दूसरी बात,
इससे नीचे जब और ज्यादा हम प्रेस करेंगे तो सिम्फाइसिस ट्यूबस के ऊपर वाला जो बॉर्डर है नाभि की तरफ हाइपोगैस्ट्रिक की तरफ ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमें हार्ड महसूस होना शुरू हो जाता है। ये साबित करता है कि इसकी प्रेगनेंसी भी है और ये प्रेगनेंसी जो है 12 वीक की हो चुकी है। 12 वीक के बाद मीन्स 3 महीने, 12 वीक के बाद ये यूट्रस का जो ब्लड फंडस है ऊपर वाला ये ऊपर आना शुरू हो जाता है, पेट में आना शुरू हो जाता है। हालांकि और बहुत सी निशानियां हैं जिसको हमने पहले भी कई बार बताया, फिर जब समय आएगा यूट्रस का या प्रेगनेंसी का तो पूरी डिटेल में आप सब लोगों को बताऊंगा कि उससे पहले की क्या निशानियां, पहले कैसे पता चलता है। तीन ये जो हम उसको बोल रहे हैं कि 3 महीने की बात है, 12 वीक की बात बोल रहे हैं, 12 वीक से पहले भी तो औरत को पता चलता है ना, क्योंकि अब उसको तकरीबन 2 महीने हो गए बच्चे को माँ के पेट में सेट करते हुए, 1 महीना क्योंकि 21 दिन के बाद फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन से हमने काउंट किया था, तब से लेकर 21 दिन हो गए जब वो बच्चेदानी में आया था, तो मतलब 2 महीने 9 दिन तो उसको तब तक हो गए जब उसके 3 महीने पूरे हुए। तो इसी हिसाब से हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में कौन कौन चीज है। नॉर्मल हालात में अगर प्रेगनेंसी नहीं है और ब्लैडर पेशाब भी नहीं है, नॉर्मल पेशाब को आम तौर पर एग्जामिन करते हुए डॉक्टर बोलते हैं कि पहले आप बाथरूम जाकर आओ फिर एग्जामिन करते हैं हम लोग, उसी लिहाज से सिम्फाइसिस ट्यूबस से ऊपर अगर बगैर प्रेगनेंसी के हमें कुछ दिखाई देता है तो वो या तो यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसमें कोई ट्यूमर हो सकता है, फाइब्रॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर यूट्रस में फाइब्रॉइड वगैरह हो जाते हैं, मसल में ट्यूमर हो जाते हैं, या इस तरह की कोई और बहुत सी चीजें हैं जो जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, उसकी बात भी हम करेंगे आगे चलकर। तो मेरे पास तो इतना दिमाग भरा हुआ है कि क्या क्या हुआ बोलता जाऊं तो इसी पे ये पूरा मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो खैर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस एरिए में ये चीजें रहती हैं, यूट्रस, ब्लैडर, नीचे का पोर्शन है डेवलप्स पाउच, वो खाली हिस्सा है, वो नो बॉन्ड ग्लैंड है। अगर रेक्टम में ज्यादा मल भर गया, कवर हो गई, तो वो हिस्सा रेक्टम कवर कर लेती है। अगर प्रेगनेंसी होगी या यूट्रस में सोज हो गई या फाइब्रॉइड हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर यूट्रस इसको कवर कर देती है। और इसीलिए आमतौर पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादातर कब्ज हो जाती है, कब्ज हो जाती है। उसका कारण यही है कि यूट्रस जैसे जैसे बढ़ती है वो आगे को भी बढ़ती है, पीछे को भी बढ़ती है, ऊपर को भी बढ़ती है, क्योंकि नीचे वो उसकी घुटन है, नीचे उसकी घुटन है जिसकी वजह से वो नीचे को ज्यादा नहीं प्रेशर पड़ता, ऊपर को ज्यादा प्रेशर उसका पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनको कब्ज हो जाती है। क्योंकि जो डॉगलेग पाउच वाला खाली हिस्सा है रेक्टम और यूट्रस के बीच में, वो यूट्रस कवर कर देती है, प्रेशर पड़ जाता है रेक्टम में और उसमें आमतौर पर कब्ज औरतों को हो जाती है। और ये यहां की आमतौर पर पोजीशन है, ये इसमें अंग है। तो यूट्रस, बॉडी ऑफ फंडस ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ये तीन हिस्सों में हम यूट्रस को समझने के लिए रखते हैं। और ये तीनों ही हिस्से हाइपोगैस्ट्रिक एरिए का हिस्सा है। सामने ब्लैडर मैंने बता दिया, पीछे डॉगलेग वॉल बता दी, दोनों साइडों में फैलोपियन ट्यूब बता दी, दोनों साइडों में मैंने ओवेरियन लिगामेंट बता दिया और दोनों साइडों में है मैंने ओवरी बता दी। ये इनकी नॉर्मल तौर पे आमतौर पर यहाँ हाइपोगैस्ट्रिक के लिए पोजीशन है। अब आओ आगे आदमी के एरिए में, ये वार्ड की बात मैंने कहा, आदमी के संबंध में इस हाइपोगैस्ट्रिक एरिए में सेक्स ऑर्गन का सिर्फ एक ही ऑर्गन रहता है। ये जितने ऑर्गन मैंने गिने ना, ये औरत के जनन अंगों के एरिए है या सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, ये एरिया है, नीचे की वैजिनल एरिया भी आ गया तो ये सब उसी में आ जाता है। लेकिन आदमी के जितने भी जनन अंग हैं या यूरेथ्रा है वो पेट से बाहर है, और पेट से बाहर होने की वजह से सिर्फ प्रोस्टेट एक ऐसा हिस्सा है जो पेट के अंदर है। इसके बारे में मैं बहुत बार आपसे बात कर चुका हूं, मैं फिर दोबारा ये बोल देता हूं कि भाई औरत के जनन अंग पेट में रखे हैं कुदरत ने, इसलिए
कि औरत के अंडे को डेवलप होने के लिए ईद की जरूरत है। आपने मुर्गी को देखा होगा ना, अंडों के ऊपर बैठती, हम लोग बोलते हैं कुड़क कुड़क पर बैठी है कुकरी, उसको हीक देती है अपनी, जिसकी वजह से फिर बाद में अंडे फूटते हैं और उसमें से चूजे निकलने बाहर शुरू हो जाते हैं। ओवरी फटती है, उससे ओवम निकलता है और इसके लिए उसको हीट चाहिए, इसलिए कुदरत ने पेट की हीट उसको देने के लिए लगातार वो हीट बनाए रखने के लिए वो औरत के जो जनन अंग हैं वो पेट में रखे। लेकिन स्पर्म जो है ना, स्पर्म आदमी के, उनको इतनी हीट नहीं चाहिए, वो मर जाते हैं हीट में, उसकी हिम्मत है कि इतनी हीट बर्दाश्त करेंगे, इसलिए ये जितने भी अंग हैं वो पेट के नीचे उसने एक थैला बना दी। जितने भी हमारे मांसपेशी हैं ना, तीनों मांसपेशी हमने गिनी, ओब्लिक वाली तो ऊपर में रह जाती हैं, ट्रांसवर्स वाली भी ऊपर रह जाती हैं, लेकिन ऊपर से एक रेक्ट शीट आ रही है, वो जो नीचे तक जा रही है, एक गांठ बांध रही है मांसपेशियों को, वो नीचे का हिस्सा एक थैला, एक बैग बना देती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। और स्क्रॉटम में अगर आप देखें आप आदमियों में, तो सेंटर में एक स्यूचर स्यून लगी हुई है कि राइट साइड से भी आई लेफ्ट साइड से भी आई, वो जो मांसपेशी आगे बढ़ गई उसको वहां कुदरत ने स्टिच कर दिया, वो स्टिचिंग का निशान आप देख सकते हैं। और ये सारी जो क्रिया है ये आम तौर पे आठवें महीने के बाद जो मेल के जनन अंग हैं वो पहले वो ये भी बच्चे के अंदर जाते हैं, बच्चे के पेट के अंदर ही टेस्ट रहते हैं, लेकिन आठवें महीने की प्रेगनेंसी के बाद गती क्रियाएं इस टाइप की होती हैं जिसकी वजह से ये जो टेस्टिस हैं दोनों साइड के भी, दोनों तरफ की इंग्वाइनल कैनाल से निकलकर नीचे स्क्रॉटम वाले बैग में आ जाते हैं। और वो स्क्रॉटम वाला जो बैग है वो मैंने आपको बताया कि उसी मांसपेशी से बना हुआ है जिससे हमारा पेट बना हुआ है। दाहिने साइड से मांसपेशी आई नीचे, बाएं साइड से मांसपेशी आई नीचे, दोनों को स्यूचर कर दिया, स्टिच कर दिया कुदरत ने। वो निशान आप देख सकते हैं कि वो दोनों टेस्टिस के स्क्रॉटम के दोनों तरफ जो मांस पे ही सेंटर में फ्यूचर है। और ये जो फ्यूचर है सिर्फ स्क्रॉटम में नहीं है, इंद्री में भी है, इंद्री के नीचे भी आप देखेंगे आप टू एंड जो प्रीपस है, जो मांस पेशी ऊपर चढ़ी हुई है अपने ग्लांस पेनस के ऊपर, वो भी स्टिच की हुई है। ये उसी पीस का हिस्सा है जो हमारे पेट की मांसपेशियां पेट को बनाती हैं, बाहर की दीवार, इसी तरह टेस्टिस को भी बनाती हैं, इसी तरह हमारी यूरेथ्रा का जो गिरा गया है वो बाहर का कवर है, ये भी उसी से बनता है, पर इसको नीचे उसने स्टिच कर दिया, स्क्रॉटम को भी कर दिया और ऊपर वाले पासे हमारे पेनिस को भी जो है वो इंद्री को भी स्टिच कर दिया। तो वो स्टिचिंग का निशान आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह का निशान कुदरत ने पहले किया, और इसको आठवें महीने के बाद कुदरत इसको नीचे निकाल देती है कि नहीं अब तुम अगर यहाँ पर रहे तो फिर जो तुम्हारे अंदर क्रिया होने वाली है अल्टीमेट वो टू साइट बोलते हैं वो नहीं बनेंगे टेस्टिस में और उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे। और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, बीमारी के तौर पर हम कह सकते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझी जाती है कि स्टरिलिटी, मेल स्टरिलिटी, बच्चा ना पैदा कर सकने की कुवत, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उसमें एक कारण ये भी है अनडिसाइडेड टेस्ट, टेस्ट की वो जो गोलियां हैं वो पेट से निकलकर नीचे स्क्रॉटम में नहीं गई हैं और वहां पर हीट है, उनकी वजह से उनमें जितने भी स्पर्म बनते हैं वो किल हो जाते हैं। और किल होने के बाद आपको मैंने ये बताया था कि भाई एक प्रोसेस है कुदरत का अपना जिसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस, उस ऑटोलाइसिस की वजह से वहां पर ही स्पर्म बनते हैं एपिडिडाइमिस तक, वहां पर ही स्पर्म बनते हैं, वहां पर ही वो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वहां पर उनकी राख बन जाती है, वही राख फिर वापस जाने वाले खून में चली जाती है, वो फिर ऐसे ही चक्कर जो चलता रहता है और इससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार ऐसा होता है एक टेस्ट जो है अनडिसेंडेड है, कई बार दोनों टेस्ट ही अनडिसेंडेड जो हो जाते हैं, और अगर एक टेस्ट अनडिसेंडेड है तो कई बार ये भी प्रेगनेंसी पैदा कर सकता है, क्योंकि स्पर्म तो उसमें बनी रहे। आदमी के स्पर्म दोनों टेस्ट में बराबर हर बार लगातार बनते रहे,
लेकिन औरत में एक एक बहुत अजीब बात है कि इससे इस डिफरेंस है। औरत में तो ओबी में ओबो बनना है ना। आदमी के टेस्टिस की मैंने बात आप सब लोगों को ये बता दी कि दोनों ही टेस्टिस में लगातार स्पर्म की प्रोडक्शन होती रहती है और एक इजैकुलेशन में अडल्ट एज में एक एजेकुलेशन में 120 से लेकर 150 इवन समटाइम्स मोर स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। लेकिन औरत के ओवरी से एक बार में केवल एक ही अंडा निकलता है और वो भी एक बार एक ओवरी से निकलता है, दूसरी बार दूसरी ओवरी से निकलता है, एक ओवरी उस वक्त रेस्ट कर दी है। और जब मैंने ये कहानी आपको बता रहा था पीछे के लेक्चरों में, तो मैंने आपको बताया था कि इतने ज्यादा स्पर्म कुदरत को पैदा करने की जरूरत क्या थी भाई, जब एक ही स्पर्म काफी है किसी एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, तो 150 मिलियन इतने स्पर्म एक एजेकुलेशन में पैदा करने की जरूरत क्या थी। मैंने आपको बताया था कि रास्ते में चलते चलते टेस्टिस से बाहर आते आते इसमें मुआद ज्यादा मिलता है, जो 2/3 ऑफ सीमन, जितना भी सीमन एक आदमी का डिस्चार्ज होता है उसमें 2/3 हिस्सा जो है वो प्रोस्टेट से निकलता है। जब ये निकलते हैं ना प्रोस्टेट से, तो एक क्रिया होती है, जैसे आप मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल समझे कि ऐसे ही क्रिया होती है। आप मुंह में उंगली डालो, मुंह में कोई चीज डालो, तो आप देखिएगा मुंह में उसी वक्त सलाइवा आ जाता है। ठीक इसी तरह की नीचे से स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए जैसे ही प्रोस्टेट में दाखिल होते हैं तो प्रोस्टेट में एक इस तरह की इरिटेशन होती है, जो क्रिया मैंने अभी आपको मुंह की बताई है कि उसमें सलाइवा आना शुरू हो जाता है, तो वो स्पर्म को आपस में घोल देता है और फिर सीमन का एक पूरा कंटेंट बन जाता है। कभी इतना सीमन 3-5 ml हम लोग नॉर्मल समझते हैं, 3-5 ml जो सीमन है होना चाहिए, और वो फिर आगे जाना शुरू होता है। पता चल दूसरी बात, इसके मरने की कंडीशन मैंने क्यों कुदरत ने ऐसा बनाया कि जब भी ये औरत के जनन अंगों में जाता है वेजिनल एरिया में, तो ये एल्कलाइन मीडिया में पड़े हुए, इनका रहने सहने का जो ढंग है वो एल्कलाइन मीडिया है, लेकिन वेजिनल एरिया का जो मीडिया है वो एसिडिक है। और जैसे बेचारे एल्कलाइन मीडिया वाले एसिडिक मीडिया में एंटर करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। वहां पर एसिडिक मीडिया इसलिए रखा कुदरत ने, वेजिनल एरिया एक तरह की बंद गली है, और बंद गली में सफाई नहीं होगी तो उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। इसमें सदा सफाई होती रही है, कुछ एरिया कुछ एक परसेंटेज उसने एसिड भी डाल दी, तो ये एसिड मीडिया बना रहता है, और जैसे ही स्पर्म वहां पर दाखिल होते हैं मैक्सिमम स्पर्म जो है वहां वेजिनल एरिया में मर जाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर पाते कि हम तो एल्कलाइन से आए थे, यहां पर हम नहीं रह पाए। लोग यहां से चांद को जाते हैं ना तो बोलते वहां हवाई नहीं है, वहां कोई मौसम ही नहीं है, अपनी एयर से ही लेकर जाते हैं, जिंदा रहते नहीं तो शायद मरते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। इसी तरह ही अलग अलग मीडिया में जीने का अलग अलग लोगों की संभावना होती है। स्पर्म की संभावना जीने की एल्कलाइन मीडिया में है, वेजिनल मीडिया में एसिडिक मीडिया होता है, तो ये बेचारे मर जाते हैं। नंबर एक इसलिए मर जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, हमारे शरीर में कुदरत ने एक इस तरह का नियम बनाया है, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन, बाहर से कोई भी दुश्मन हमारे घर पर आता है तो हम उसका मुकाबला करते हैं ना, उनको मारने की कोशिश करते हैं ना। ये स्पर्म वेजिनल एरिया में गए हैं, वहां हमारी बॉडी का जो WBC है, औरत के जनन अंगों में खून में तो सर्कुलेट कर ही रहा है, वो इनको किल करने की कोशिश करता है, वो भी किल करते हैं। एक तो ये हो गया कि एसिड मीडिया है बेचारे मर गए, दूसरा ये हो गया कि वहां के जो WBC है वो इनको किल कर देते हैं। तीसरी एक और बात है, यहां पर कुदरत ने खुद सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, वेजिनल एरिया में कुदरत ने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, उनका नाम है डॉटरलीज बेसिलस। आम तौर पे सफाई करते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी तादाद कम हो जाए
तो औरतों को आमतौर पर वाइस डिस्चार्ज, लिकोरिया वगैरह ये होना शुरू हो जाता है। अगर उनकी तादाद बढ़ जाए तो भी औरतों को खारिश होनी शुरू हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये डॉडलीज बैक्टीरिया बढ़ जाए तभी प्रॉब्लम, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। तो ये क्रिया वहां होती, लेकिन इन तीनों प्रॉब्लम से बचते हुए एसिडमीरिया हमारे औरत के शरीर के डब्ल्यूबीसी प्लस डॉडलीज बैक्टीरिया तीनों बीमारियों से बचते बचते, तीनों दुश्मनों से लड़ते लड़ते, ये एक्सपेक्टेड अब तक साइंस ने निकाला है तकरीबन 200 के करीब, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, एज एन एवरेज 200 के करीब स्पर्म जो है जंप करके यूट्रस में जाने की कोशिश करते कामयाब हो जाते हैं। एक बात और भी मैंने ये कही कि वेजिनल एरिया यहां पर आकर जहां पर यूट्रस नीचे वेजिनल एरिया में खुलती है, जिसका सर्विक्स ओपनिंग है वो वेजिनल एरिया में खुलता है, वहां पर यूट्रस में एक कर्व है, वो जो कर्व है तो उस कर्व में अगर सीमन की क्वांटिटी नॉर्मल मैंने आपको बताया 3 to 5 ml नॉर्मल क्वांटिटी है, मतलब क्या हुआ वो जो कर्व है जो गैप बन गया वो भर जाएगा सीमन से, बावजूद इसमें कुछ बच जाएंगे और वो जो डिप कर रही है नीचे को यूट्रस की सर्विक्स उसमें जाने उनको आसान हो जाएगा, वो उसमें जा पाएंगे। मान लिया जाए बाकी तो सब बीमारियों से वो बच गए, एसिडमीरिया से बच गए, डॉडलीज बैक्टीरिया से बच गए, डब्ल्यूबीसी से बच गए, लेकिन वो क्वांटिटी ही कम है, सीबन की क्वांटिटी कम है तो वो जो उसका सर्विक्स का मुंह है, बच्चेदानी की सर्विक्स का जो मुंह है वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो सुपर्म फिर भी बेचारे जंप नहीं कर पाएंगे, फिर भी नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी फिर भी नहीं होगी। तो इतने सारे ये कारण है इनफर्टिलिटी के, जिसको हम स्टरिलिटी बोलते हैं कि बच्चा नहीं पैदा करने की सलाहियत है, कमी पेशी है कुछ ऐसा है, तो ये कमी पेशी में वो सब चीजें आती है और फिर लोग बोलते हैं कि भाई 200 के करीब स्पर्म अंदर गए और बच्चेदानी में जाकर फिर बेचारे दो भागों पहुंच गई, 200 की पहुंच गए किसी न किसी तरह, आगे दो भागों में बांट गए, एक राइट फेलोपियन ट्यूब में गए आधे दूसरी ट्यूब में चले गए। और आपको मैंने बताया था कि एक तरफ ओवरी एक महीने में एक तरफ एक ही ओवरी ओवम पैदा करती, दूसरी तरफ रेस्ट करती, जिस तरफ ओवरी में ओवम नहीं बना इस बार वहां पर जो स्पर्म जाएंगे एक तो तब तक जाए 5 days, एक तो तब तक वहां पर जाते जाते उनकी खुराक खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई और कोई सहयोग वहां से उनको मिला नहीं, ओवम आया ही नहीं कि भाई उसको खुराक दे दे, चल यार बांट के खा लेते हैं आगे फिर डेवलप करेंगे तो है नहीं, इसलिए वहां पर वो डेड हो जाते हैं। उनके लिए फिर एक ऑटोलाइसिस का प्रोसेस कुदरत शुरू करती है कि वो डिजॉल्व कर देती है, लिक्विफाई हो जाते हैं और वापसी जाने वाला वेनस ब्लड है फेलोपियन ट्यूब से उसमें फिर सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ जिधर हमारा ओवम था, जिधर हमारा ओवम था उसमें 200 में से 100 उधर भी पहुंच गए, और वो जो उधर पहुंच गए हैं तो वो ओवम को चारों ओर से घेर लेते हैं, और जब चारों ओर से घेर लेते हैं तो एक स्पर्म ही बेचारा उसका भी एक हेड ओनली एंटर करता है एक बच्चा पैदा करने के लिए। और आपने देखा होगा अंडे को, तो हम ही देखा, अंडा तो वैसे ही है, अंडे के ऊपर पूरी तरह एक गिल्ली जड़ी होती है वो जो सख्त होती है, अंडे को आप उबाल भी दो ना, उबालने के बाद भी बाहर ऊपर वाला फोल्ड निकाल ही दो नीचे का और लेयर होता है उसके, और वो भी बहुत सख्त लेयर होता है, उसको एंटर करना भेजना स्पर्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि खुराक भी बेचारी उसकी कम हो रही है, जो पीछे से लेकर चला था टेस्ट से या कुछ हिस्सा उसने प्रोस्टेट ने उसको दे दिया था, अब उसकी खुराक भी खत्म हो रही है, समय भी उसका खत्म हो रहा है, उसको निराश हो रहा है, अल्टीमेट जो लास्ट कमिंग स्पर्म है वो इसके ऑटोलाइसिस होने की वजह से उसकी दीवार भी पतली हो जाती है अंडे की, और ये भी मर जाते हैं, ये भी ऑटोलाइसिस हो जाते हैं, और जो पीछे से स्लो स्पीड में आ रहा है जरा स्पर्म है अगर वो भी पूरा एक्टिव है, पूरा फौजी है, पूरा ट्रेन है,
पीछे आने वाला भी वो इस ने इन्वेड कर जाता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ये हिस्सा वैसे इस पोर्शन का आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है क्योंकि आगे आप बहुत से लोग इससे इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि स्टरिलिटी के लिए पता नहीं कितनी क्लिनिक खुली हुई है, इनफर्टिलिटी की कितनी क्लिनिक खुली हुई है। इसका मतलब अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि वहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कमी पेशी है जिसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये लोग जान सके। इसलिए मैंने कह दिया ये एक्स्ट्रा पोर्शन था इस आज के लेक्चर का। और हाँ, आज के लेक्चर में यही है कि आदमी के जनन अंग प्रोस्टेट के अलावा बाकी सारे बाहर हैं और बाहर होने के लिए जो कारण है वो यही है कि उनको इतनी हीट नहीं चाहिए जितनी हीट ओवम को डेवलप होने के लिए चाहिए। और दूसरा उनके मीडिया की बात भी मैंने आपको बता दी कि ये अल्कलाइन है और के एरिया में वेजिनल एरिया में वो एसिडिक होता है जिसलिए उनकी डेथ होती। कुदरत ने इसी सब चीजें को जानते हुए ही इतने ज्यादा स्पर्म पैदा कर दिए कि चलो कुछ तो बचेंगे, कुछ तो बचेंगे। तो ऐसा ये यहाँ का एरिया है। अब और बाकी बचे हिस्से हमारे, इसके हिस्से के नीचे डॉगलास पाउच इसके पीछे रीढ़ की हड्डी से पहले, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का उस वक्त कॉक्सिजियल पोर्शन है, कॉक्सिक्स है हमारी जिसको टेर ऑफ वर्टेब्रा कारण कहते हैं, वो हिस्सा है। और उस हिस्से के बराबर में हमारा रेक्टम का पोर्शन, गुदा जिसको रेक्टम का स्टूल हाउस आप बोल सकते हैं उसको, रेक्टम को स्टूल का स्टोर हाउस, क्योंकि स्टूल के स्टोर हाउस की भी अपनी ही कहानी है। आप ये समझते हैं ना कि सेंसरी फाइबर से लोकोमोटरी फाइबर हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और हर एक जगह की, अरे हाँ हमने अपनी उंगली पे चुटी काटी, ब्रेन पहुंच गया मैसेज, ब्रेन ने उसी वक्त कहा कि जो चीज वहां पर है उसको हटाओ, या तो उंगली हटाओ या दूसरी चीज को हटाओ, अगर गर्म चीज से लगी उंगली तो उंगली को पीछे करो, ये हुक्म उसी वक्त आ जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर रेक्टम के हिस्से में जो हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जा रहा है तो रीढ़ की हड्डी से आ ही रहा है। और हर एक चीज में जैसे टेलीफोन की लाइन में एक से आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, एक से मैं आपकी सुन रहा हूं, उसी तरह सभी जगह नर्वस सिस्टम तो इसी तरह है ना, इसी तरह का ही है। पर रेक्टम के एरिए में सेंसरी फाइबर इनएक्टिव है, सेंसरी फाइबर इनएक्टिव है, वहां से गुजर रहे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं, कई बार आपने देखा होगा ना कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है ना, कुछ स्टेशनों पे वो रुकती ही नहीं, वहां ना सवारी उतारती है ना लेती है, नीचे नहीं निकल जाती है। तो रेक्टम के एरिए से ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो यहाँ की हाजत को महसूस करता है ये यहाँ पर एक्टिव नहीं है। लेकिन आगे चलकर जहां पर हमारी एनस का और रेक्टम का जंक्शन है, तकरीबन रेक्टम का एरिया होता है 24 सेंटीमीटर, एनस का एरिया होता है अबाउट 12-14 सेंटीमीटर, तो उन दोनों का आपस में एक जंक्शन है और वो जो जंक्शन है वहां पर जाकर सेंसरी फाइबर एक्टिव हो जाते हैं और हमारी एनस के पास इस तरफ में वो एक्टिव रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, चाहे माल तो लगातार ही आ रहा है उसमें, रेक्टम में माल तो लगातार ही आ रहा है, लगातार ही आंखें हमारी मूव कर रही, तो फिर हम टॉयलेट में ही बैठे रहते, जो कि बार बार हो रहा है, टॉयलेट में ही बैठे रहते हाजिर होती। यहाँ पर सेंसरी फाइबर नहीं है, रेक्टम हमारी भरती जाती है, कई लोग दो दो तीन तीन दिन छुट्टी आती ही नहीं है, रेक्टम भरती जाती है और भी कारण हो सकते हैं उसके। लेकिन हाँ, सेंसरी फाइबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस हाइपोकैल्सिक एरिया की बात बता रहा हूँ, तो सेंसरी फाइबर यहाँ पर एक्टिव नहीं है, लेकिन जहां पर जंक्शन है एनस का और रेक्टम का वहां पर जाकर ये एक्टिव हो जाते हैं। और वहां पर भी एक्टिव होने की इनकी एक स्पेशल कंडीशन है, वो क्या है, आपने देखा होगा ना हम आते लोग बनाते हैं ना पिलर बनाते हैं, पिलर बनाने के बाद वो कहते हैं कि भाई इस पिलर पे दो मंजिल की इमारत बन सकती है, इस पिलर पे तीन मंजिल की इमारत बन सकती है। उसका स्टेमिना स्ट्रेंथ उनको पता होता है कि कितना सीमेंट कितना सरिया हमने डाला है और कितना ये लोड ले सकता है,
और जो गठन घुटन रेक्टम और एनस के उस एरिए में है उसका वेट बीरिंग कैपेसिटी है, ये जो नर्वस सिस्टम के सेंसरी फाइबर हैं उनकी वेट बीरिंग कैपेसिटी है कि कितना भार रेक्टम में आ जाए मल का तो फिर हाजिर होगी। ऐसे नहीं है कि बार बार लगातार हाजिर होता है कि इतना वेट आ जाएगा मल का फिर हाजिर होगी फिर आप जाएंगे। रेक्टम एनस में आकर आमतौर पर स्टूल ज्यादा देर स्टोरेज नहीं रह सकता, फुल ऑफ सेंसरी फाइबर है, फुल ऑफ लोकोमोटिव फाइबर है, इसलिए वहां पर आकर नहीं आ जाए ना तो फिर आपको कई बार टॉयलेट तक भी नहीं लोग पहुंचते हैं जी। तो जब ऐसी हाजत होती है तो देन वी गो, क्योंकि रेक्टम से अब मल नीचे एनस में आ रहा है और वहां एनएस इसको ज्यादा देर स्टोर नहीं रख सकती, और ये सारे का सारा पोर्शन जो है किसमें है भाई, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में हम इसको काउंट करते हैं। एनएस और आदमी के यूरेथ्रा का जंक्शन या टेस्टिस का जंक्शन जो है उसके बीच एक एरिया है, उसके बीच एक एरिया है और उसको हम बोलते हैं प्रीनियम। प्रीनियम ये चौमुखिया टाइप का एरिया है, चौरस का एरिया है इस तरह का, जो हमारी इंद्री से या यूं कहें कि टेस्टिस के नीचे से लेकर हमारी गुदा तक जाता है, आदमी में भी औरत में भी, और इसका नाम है प्रीनियम। प्रीनियम एक इस तरह का हमारा जंक्शन है, ये बताना बहुत जरूरी था, इस हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में ही बात कर रहे हैं कि ये हमारा जंक्शन बॉक्स है। जैसे घरों में बाहर से बिजली आती है ना तो फिर हमारे घर में एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये स्विच जो है किचन का है, ये स्विच हमारे लिविंग रूम का है, ये स्विच हमारे बेडरूम का है, अगर फ्यूज उड़ गया तो फिर हम उस जंक्शन के पास जाते हैं। यहां पर आकर नर्वस सिस्टम का जंक्शन बॉक्स है इस प्रीमियम में, और ये प्रीमियम अब तक की खोज के मुताबिक पता चला है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन और उसका एक्सेलरेशन, जैसे कुछ लोग सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद एकदम डिले हो जाते हैं, और उसका मतलब यही है कि फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हो गया? कि ये जो जंक्शन बॉक्स है इसमें विकार आ गया, इसमें कोई कमी पेशी आ गई और लगातार इसमें इरेक्शन इरिटेशन होती रहती है, इरेक्शन आपका बढ़ता रहता है, सेक्स प्लेजर आपका बढ़ता रहता है। तो प्रीमियम की इतनी बड़ी महानता है जो औरतों में भी जो आदमियों में भी यहां पर रहता है, एनस और औरत के वजाइनल एरिया के नीचे वाले एंड से लेकर या आदमी के टेस्टिस के नीचे से लेकर जहां पर उसका ओरिजिन है पेट के साथ जुड़ा हुआ, और कच्ची और रस्ते तक का जो एरिया है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और ये जो प्रीमियम एरिया है ये भी इसी एरिया में आता है जिसको हमने बोला हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा समय समाप्त हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा ही लंबा ले गया, पर जो चीज मेरे सामने आती है ना मैं सोचता हूं कि उसको सुहागा फेर से आगे चले, ऐसे ना हो एक छोड़ दें कि बात करें तो क्वेश्चन मार्क मैं ही छोड़ के आगे चला जाऊं, तो आपके दिमाग में तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही ना। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि जहां तक संभव हो सके टाइम पीरियड के मुताबिक मैं उस चीज को भी क्वेश्चन मार्क को हल करता जाऊं। जैसे स्ट्रेटजी की बात, आज स्ट्रेटजी का काम तो नहीं था ना, लेकिन मुझे कहना पड़ा कैसा होता क्यों है, क्योंकि ये चीज आपके टेंशन को और ज्यादा अफेक्ट करेगी कि हम ये प्रोग्राम सुने, इसमें हमें और भी बहुत कुछ पता लगता है। तो खैर आज का समय समाप्त, मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एंड कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है, निराश हो गए हैं ट्रीटमेंट से, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं अपनी बीमारी के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो भी आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। आखिरी गुजारिश फिर बार बार हम दोहरा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इन प्रोग्रामों में कुछ जानकारी आपको मिल रही है तो ये जानकारी आपके नियरेस्ट को भी मिलनी चाहिए ना, रिजर्व ना रखें अपने पास। मैं भी नहीं रिजर्व रखता, मेरे पास ये इतना जो भंडार इकट्ठा हो गया ना, मैं भी चाहता हूँ कि जाने से इस दुनिया से जाने से पहले पहले मैं बांट दूं सभी।
और मैं चाहता हूं आप इसमें मेरा सहयोग करें और लोगों को कहें कि ये वो भी मेरे फेसबुक चैनल में आ जाएं, फ्रेंडशिप में आ जाएं और रोजाना प्रोग्राम 5 से